दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला का थूरी को गाहक आयो लाद्यों का निर्जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी सो उर्ज पहा मोहन ठगौरी सो

उस गोविंद दे गुण नहीं गाए, जन्म बिरथा गवा लिया, ओदा सिमरन इस तरह कर जिस तरह मच्छी

शरीर नू इस जवानी नू बुढ़ेपे ने काबू कर ले, बुढ़ेपे ने जीत ले, हाले भी तू सिमरन नहीं करदा, तेरी उम्र बीतती जा रही है।

सारे सुख देने वाला एक कोई और आम है, कोई और नहीं। ओदा सिमरन कर तेरी गत हो जाएगी।

सियाने लोको इस शरीर 75 साल का बने है अते जिसने ये जीव बनाया है उस दे विच ही आखिर समा जाना है।

ना दुख दा दुख ना जिदे विच लोभ है ना अहंकार है भाई ओ इंसान भगवान दी।

निंदिया की थी तामी कोई परवाह नहीं, जिदे वास्ते सोना ते लोहा एक समान है भाई, ओ इंसान मुक्ति नु प्राप्त समझे।

एक आदमी आया, उत्ते शाल दे गया, ठंड का वेला सी, कीमती शाल मिलिया पर कोई खुशी नहीं। एक आदमी आया, उत्तु शाल ला के लै गया ते दुख नहीं कीता। एक आदमी आया, प्रसादे का थाल अगे रखिया, खान लगे ने। एक होर आदमी आया, वो अगों थाल चुक के ते आप खा गया, भोजन आया

अपनी जीव दे नाल उस गोबिंद दे गुण गाओ, कन्ना दे नाल उहदा जस सुनो, ते फिर भाई तुसी जमा दे वस नहीं पाओ।

हर रोज दिन रात माया वास्ते इंसान भटकता फिरदा है, पर करोड़ां दे विच कोई विरला इंसान है जिहड़ा परमेश्वर दा सिमरन

पानी का पतीला रख दी, पानी गर्म हो जाए ते आग दे वे तेज बलन दे नाल पानी उबल दे ते बुलबुले उठ दे ने पानी दे। गुरु साहब जी कहंदे ने भाई जिस तरह ओ बुलबुले उठदे ने पानी दे ते खत्म हो जांदे ने, इस तरह ही इस संसार की रचना भी इस तरह की।

दुखी हो गए ते सारिया ने साथ छड़ दिता, पर याद रख सारे साथ साथ छड़ जांदे नहीं, पर एक परमेश्वर जिहड़ा है वो हमेशा सहाई रहिंदा।

बचपन जवानी बुढ़ेपा तेन अवस्था समझे के भजन तू बगैर तीनों अवस्था एवं गवा ली भजन तू बगैर विरथिया ने।

इंसान सोचता कुछ हो रहा है पर होंदा कुछ हो रहा है। सलामा करदा रह जांदा है ते ओदू पता लगदा है जदू जमा दा रस्सा गल

झूठे मान क्यों कर दे, जगत नु सुपने दी तरह समझ, कुछ भी तेरा नहीं। गुरु नानक ए गल सच्ची कहंदे, करदा मालिक सारी उम्र तिया पुत्रां दी पालना कर दे, पाप करके कमाई कर दे, दिन रात भज फिर दे माया वास्ते, जदू मरद वेड़े विच पिया हुंदे, फटे ते पांदे ने जिन्हां तियां पुत्रां दी पालना की थी, फिर ओही कहंदे ने एदियां जेबां फोड़ लो, घर दियां चाबियां तां नहीं जेब विच, किधरे माया वाला बटुआ तां नहीं पाया, जे पाया है तां कढ लिया, हाथ देख लो कोई सोने दी अंगूठी तां नहीं पाई, कड़ी तां नहीं पाई, जे पाई तो वह भी ला ली, जिस चंगा सूट पाया तो वह भी ला लेंदे ने। घर दा मालिक एक कफन पा के उही तिया पुत्र लैके तुर पैंदे ने, शमशान घाट लै गए, जे कफन चंगा है ते कई बारी साड़न वाला वह भी ला लेंदा है, माड़ा जा कफन रह गया ते फिर अग कहंदी है भाई आया ते नंगा सी, ये कफन किथे लै चले हैं, वो कफन अग सांभ लेंदी, शरीर भी नाल नहीं जांदा। ते गुरु साहब जी कहंदे ने भाई तू जिन्ना वास्ते पाप करदा है किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना, उन्हां ने तेनू नंगा करके घरों बाहर कढ़ना है, क्यों झूठे मान करदा है कोई।

रही बंधन पै गए, कुछ भी उपाय नहीं हो रहा। ऐ परमेश्वर हुण तेरा ही आसरा है, मेरी रखिया कर, जिवें तंदुए तू गज हाथी दी तू

जिन्हें दरगाह विच तेरी सहायता करनी इस माया ने धन पदार्थ ने किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना। एक परमेश्वर का सिमरन है जिन्हें तेरी सहायता करनी ता पाई उस गोबिंद दे गुण गा ताकि तेरा जिहड़ा जन्म है।

Pues ahora creen que es. ¿Atende? ओ फिर कोई शरीर गए तू सियासी यार लै भी चुका घर तेरा ते क्यों नहीं छड़दा नाल किते जेड़े शरीर गए सी उन्हें इन्ना ही कहता कि वो बाबा दीप सिंह दे दर ते चुपहरे देंदे ने इस बन्ने उन्होंने जीवन नूं लाया इन्ने योग ओ शरीर सी थोड़ा मनमुख इन्नी गल मुंह चों ते निकल गई कहिंदा बाबा दीप सिंह मेरी लत तोड़ देगा कि उन्हें बचन सुनाया 10 बजे सवेरे बचन किया 10 बजे ते कहिंदे 4 बजे स्कूटर बस च वजदा पिया ते लत टुटदी पई हुण वेखो रब दे विच ते उहदे प्यारिआं च किड्डी भेदता जी पिट नहीं लगन देंदे इशारा लैणा रब अपने प्यारे दी सुन नहीं सकदा हुण बाबा दीप सिंह जी सिख ने कलगी एक बाणी अंदर आधार बनाया किनिया लखा दिया हुण जिहड़े ऐतवार दुपहरी किते 2 बजे जदों चुपहरे दे पाठ हुंदे वेखदे ही हो तकरीबन लख शरीर दे हाथ च सुखमनी साहब दा गुटका फड़िया तो प्यारे इहदे तो यह भाव लो कि गुरबाणी किड्डा अनमोल सौदा होएगा जिन्हें इनू हिरदे च वसाया उहदे अपने घर अपनी झोली भरनी एक पास उहनू ते कुंजियां भी मिल जांदियां हुण अमृतसर च ही दूजा स्थान है भाई शालोई दा टोबा कौन ने भाई शालोई देखी ने ना गुरु रामदास जी गज के आखो सतनाम रामदास गुरमुखो चारा अनन भगत शालो मम प्यारा ए गुरसिखी के कुतवाल खरे खोटे की करें संभाल देखो कैसा वर देते ओ जा भाई शालो तेरे दर तो खरे ते झोलियां भरणगे जे किसे खोटे ते भी तेनू तरस आ गया वही खाली नहीं जाए किने सदके इस गुरबाणी दे गुरबाणी नूं आधार बनाया झोलियां भरण वाला अगों बण याद रखियो जेड़े गृहस्थी लोग ने ना उन्हां लई पुत्तर जेड़ा मिठा मेवा हुंदा पुत्तर बड़ी वड्डी गल हुंदी आम गृहस्थी वास्ते बंदा टप जे ते फिर ते अध्यात्मक दाता उहदे लई आम गृहस्थी लई पुत्तर नूं बहुत अहमियत दिंदे ने है जी ते भाई शालो जी ओ गुरु प्यारियो किते मौज विच आ गए ने जदों गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने आवे पकाउण दे विच किते थोड़ा आ गई पातशाह दी ते इत्थो तक कई गए एक पाथी तो एक पुत्तर गए ओ महाराज ने बुलाया ओ इन्ना सौदा सौदा एक ही कही जाते एक पाथी तो एक पुत्र तेरी रसना ते गुरु नानक बैठा सिमरन बैठा बाणी बैठी है सत हो जाना कहन लगे महाराज सच्चे पातशाह जी जे मैं कह ही दिता तेरे प्यार चा के तेरा केड़ा घर छोटा फिर दई जाओ इशारा अज भी उन्होंने स्थान तो झोलियां भर दिया सुके बच्चे हो रहे पढ़िया तुसी साखियां भाई शालो जी तिलक पे से गुरु अर्जन दे पता लैण आए से भाई शालो जी हुण जदों समा हो गया 12 तो उत्ते महाराज जी अपने प्यारे दे नाल ज्यों प्यार दियां बातां एक प्यारा एक नाल मालक गुरु अर्जन देव समा हो गया इशनान दा महाराज जी ने उत्थे कीता ते जुड़ गए जदों नेत्र खोले गुरु अर्जन देव जी ने ते भाई शालो खड़े ने ओ भाई शालो तू खड़ा कहिंदा जी मालक घर आया होवे चल के ते सेवक बैठ जे ए ओ ध्यान करो जेड़े खंड पाठ घरां च रखांदे हो ते गुरु प्यारियो बाबा जी दा वचन है पुंजे लक लाना चाहिए लाना दो दिन दो रातां जेड़े महाराज दे प्रकाश घर आ जान खंड पाठ होवे ते पलंग ते कहिंदे सन नहीं सत्कार वजों पुंजे लक ला कोल चोर साहिब घर कोल पाठ सुन मालक आया जिथे नहीं समझ उथे रमता वेले आ जाणगे ते भोगले कमरे च वड़नगे भावना होवे मालक आया दर खड़ा सेवा करे हक सतनाम भाई शालो खड़ा जी मालक आया तू तिलक पे तू
ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਖੜਾ ਦਿਆਲਤਾ ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ, ਇੱਥੇ ਟੋਬਾ ਪਰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਪੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਲੋ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕੇਵਲ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਜੇ ਡਟ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਏ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਅਗਾਂਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਵੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਜੁੜੇ ਸਹੀ। ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ, ਆਓ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ।

भाई शाह भाई गुरदास जी, अकाल पुरख वाहेगुरु अगे अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, हाँ अपराधी गुनाहगार। कोई भाई गुरदास जी अपराधी नहीं सन, पापी नहीं सन, क्योंकि जिसने सच दे मार्ग ते चलना है उसनू निम्रता धारण करनी पड़ेगी। जे किसे जपा तपा दा मन विच हंकार आ जावे तां ओ जप तप कीते होए निष्फल हो जांदे हन। इसलिए जिसने इस मार्ग ते कदम रखे है उसने सब तो पहला निम्रता धारण कीती है। भाई साहब श्वास श्वास बंदगी करदे सन, श्वास श्वास जपदे सन, ते फिर सारा जीवन उन्होंने गुरु चरणा विच रह के अनेकां जीवां नूं गुरु नानक दे दर नाल जोड़िया है। एडी मान महान हस्ती होंदिया होया भी भाई साहब कहिंदे न हों अपराधी। आ जो तुसी शब्द सरवण कर रहे हो, गल्ली असी चंगियां, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दा ए शब्द है। गुरु नानक सच्चे पातशाह भी अकाल पुरख वाहेगुरु अगे ए अरदास कर रहे हैं। हे वाहेगुरु, गल्ली असी चंगियां, असी गल्लां करके तो बड़े चंगे बनन दा जतन करदे हां, पर ऐसे हां नहीं। हे वाहेगुरु, असी अपने आप नूं बहुत कुछ समझदे हां, पर ओ गल साडे विच है नहीं। गल्ली असी चंगियां, गल्लां असी बड़ियां ज्ञान दियां करदे हां, पर आचारी बुरियां, असल विच असी माड़े पासे जा रहे हां। मनो कसुद्धां कालियां, मन माड़े पासे दौड़दा है, ते गल्लां असी चिते हुण दियां करदे हां। हे वाहेगुरु, तेरी बख्शिशी सानू तार सकदी है, तेरी रहमती तार सकदी है। और भाई साहब गुरदास जी कहंदे न, मैं तो रोम रोम गुनाहगार हां। हे वाहेगुरु, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ की महान हस्ती हुए हैं। आप जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह ने कलयुगी जीवां नूं तारन हित गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रचना की, उस दे लिखारी हैं भाई साहब भाई गुरदास जी। सिख पंथ के वेद व्यास होंदे हुए भी आप कहिंदे हन हों अपराधी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। एक वेरा दा जिक्र है, भाई साहब गुरदास जी जा रहे हन ते पिछे बहुत संगत जा रही है। किसे ने वेख्या भाई ये किड्डी महान हस्ती होवेगी जिदे मगर इतनिया संगतां जा रही हन, तां पुछन लगा भाई ये कौन साहब हन। भाई साहब गुरदास जी ने एक गल सुन ली ते आप उस प्रेमी दे पास आ गए जिसने पुछया सी भाई ये कौन साहब हन। भाई साहब कहन लगे, भाई जे कुछ मेरे बारे पुछ रहा है ता इना नू ना पुछ, मैनू पुछ, क्योंकि इना ने मैनू बाहर मुखी वेख्या है ते मैं अपने अंदरले नू भी जानदा हां जो कुछ मैं हां। असी भी अपना परिचय कराउंदे हां ना, कोई पुछे भाई तुहाडी क्या तारीफ है ते किड्डे चंगे चंगे शब्द लभ के अपने लई वरतदे हां। और भाई साहब नूं जदों पुछया गया तां भाई साहब कहिंदे न, भाई इना कोलों ना पुछ, जे मेरे बारे कुछ पुछना है तां मैनू पुछ, क्योंकि इना ने मैनू बाहर मुखी वेख्या, मैं अपने अंदरले नूं भी जानदा हां। आख्या जी तुसी दस दियो, तां भाई साहब कहण लगे, हों अपराधी गुनाहगार, हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हूं पर घर जो हंदा,
ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਠੱਗ ਦੇਸ ਠਗੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਸ ਘਾਤੀ ਅਕਿਰਤ ਗਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਰਖੰਦਾ ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਦਾ ਢਾਡੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹ ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਹਨ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਚਾਰ

ते ए भी फिर सासे जे गुरसिख नूं भुख लगदी है ता मेरे गोबिंद नूं भी भुख लगदी है जो सतनाम श्री फिर परमात्मा नूं भी भुख लगदी है ए सच्ची गल है।

अगला सवाल कि ये भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा है, किवें पीता जांदा है। हुण भोजन भी मिल गया, पता भी चल गया भोजन किते है, ये भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ, पर छकिया किवें जांदा है, किवें पीता जांदा है, उसकी जुगत दसदे ने।

इस भोजन नाल तुहानूं कोई बीमारी नहीं आएगी, वकार खत्म हो जाएंगे। ते इस भोजन छकण वाले नूं सतगुरु की कहंदे ने हुण, फिर की होएगा?

कोई रचना खाली ना रहे, पहला दास बोलेगा, दूसरी बार मेरे वीर, तीसरी बार मेरी भैन। दो ही पंक्तियां बोल के समाप्ति।

कीमत अदा नहीं हो सकती। जिस वस्तु दी ओ मिल जावे तां उसनू प्राप्त कहिंदे हन। आख्या तू 84 लख जूना विचों, त्रिगण जूना विचों दुख भोगदा होया अकाल पुरख दी रहम ते नदर होई, तैनू मनुखा देही प्राप्त होई है। ते एहो ही तेरी बारी है, एही वक्त है, तू इसनू जप जप के सेवा करके प्रभु दी प्राप्ति कर लवे, जन्म मरण तो रहत हो जावे। ते जे ना कीता तां फिर ए अवसर कदे मिलेगा नहीं तैनू, इसलिए आप बख्शिश करदे हन।

जो हरी जस विच हरी दी कथा वार्ता विच वाहिगुरु दी याद विच गुजरदा है ओही लाभदायक है। ओही तेरे अंग संग होके तेरी सहायता करेगा। बाकी दा समा लेखे विच नहीं, क्योंकि गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारथ दाम। जिस तरह किरपन मनुख सारी उम्र धन जोड़ जोड़ के मर जांदा है, उसका सुख नहीं मान सकता, इसे तरह ही अमोलक श्वासा रूपी धन जो मनुख नू मिले, जे भाई जपया नहीं, सिमरन नहीं कीता, सेवा नहीं कीती, हजूर कहिंदिया न गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, तेरा संसार ते आया निष्फल हो जाएगा। इसलिए जितना भी समा सिमरन विच जप तप विच बतीत हुंदा है, समा ओ सफल है

गुरु दी शरण विच आके सेवा भगती करके मन दी शुद्धि द्वारा आत्म ज्ञान द्वारा जद असी उस दे विच लिवलीन हो जावांगे ता असी अनुभव करांगे कि वाकया ही असी जो वाहिगुरु दा स्वरूप है असी ओहो जे ही हां जेड़े उस दे सुभाव हन एहो ही साडे हन तमाम दुखां तों बरी हो जावांगे जदों असी ए समझ लवांगे कि असी राम दी अंश हां। मनुख तन इस वास्ते मिलिया है असल आस्तिक ओ है जेड़ा इस मंजिले मकसूद नूं पहुंच गया बाकी जो कोशिश करदे हन ओ भी आस्तिक ही हन क्योंकि सत संगत विच जाके ए सत संगत परमार्थ दा शकूल है। जदों जग्यासु इत्थे संगत करदा रहिंदा है जांदा रहिंदा है तां फिर रंग लागत लागत ला

इस जोगी राज दे सामने लग गई। सारे लोग हाथ जोड़ के बैठे हन। कदों ए जोगी राज अखां खोले, सानू कोई गल सुनावे। इन्ने नू इना बैठिया लोकां नू इंज लगया जिवें हवा दे विच कोई सुगंधी खुशबू जी फैल गई। दो मुसाफिर तुरदे तुरदे आए ने, जिन्हां दे चेहरे ते बड़ी मिठास है, एक खिच है। ओ तुरदे तुरदे इन्हां सारिया लोकां दे सामने आके बैठ गए। दोनां मुसाफरां ने उस जोगी राज वल देखिया। एक मुसाफिर मालक जापदा, एक नौकर। नौकर कहन लगा,

उस मालिक दा नौकर मुस्कुरा पिया। मुस्कुरा के अपने नौकर नूं हां जोगी राज जुड़िया होया पर परमेश्वर दे नाल नहीं अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा लोहे दी संदूखड़ी नाल।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण।

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना है।

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदू तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। एक गल ना

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया। तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया। एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नु कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान दा एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकलिया, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नू गली बाती जंगल विच लै गए ने। उथे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओ खोलिया। इस सेठ नू जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया, ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे, ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआं ने लुट लिया, मैं ता संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उथों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई ओ संत नहीं, पता है ओ कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान कर

गली जिना जप मालिया जिना ने गला विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी पग ते हथां दे विच चिट्टे चमकदे होए लोटे फड़े होए ने।

बसुधा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने लकड़ा भी धो के बालदे ने पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अभिमान दे भरे होए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया,

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांस

अपना वड्डापण दसण वास्ते अपने आसन तो उठे। उन्हां लोकां नूं कहण लगा, नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हे माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधर एक हवा दा बुला आया। उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वांसली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोकां ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के कुटन लग पे।

है पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तो आड़ा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बेंदे हो।

तित्तर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जो नर जाने, भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तित्तर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े, ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए ने, हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ, असीं त्यागी, पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले ता लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे, पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपया ओदे नाल मिल गया। ऐ भाई तुसी भी मन करके ओदा नाम जपो, तुसी भी इन्हां पखंडा तो

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पाई साहिब भाई गुरदास जी कहिंदे ने

कबीर गुरु धारण कर लिया ते स्वामी रामानंद जी कहिंदे ने एक दिन उठे की वेखदे ने स्वामी रामानंद जी अमृत वेले उठ के गंगा इशनान जांदे ने कहिंदा क्यों ना ऐसा होवे कि मैं इन्हां तो पहले उठ पवां जे इन्हां कोलों कुछ लैणा ही कबीर इन्हां तो पहले उठ ते जिस रस्ते जांदे ने उस रस्ते विच लम्मा पैगा हो सकदा तेरे ते नजरे करम हो जाए कबीर बरसाती ओ सिंगड़ा जिहा रस्ता ओहदे विच लम्मे पै ने स्वामी रामानंद जी पौया ते सवार अमृत वेला तुरे आउंदे हुण जिस वेले स्वामी रामानंद जी आए स्वामी रामानंद जी दे चरणां दी छोह होई हुण स्वामी रामानंद जी ने कहा पता नहीं कौन पे है इन जापदा जिवें कोई मृतक शरीर है ते साध संगत चरणा दी छो लगन दी देरी सी अज अपने मुखो एक बचन किया उठ राम के लोका राम को बस इनी गल कहन दी देरी सी कबीर ने माला फड़ ली राम राम राम शुरू है ते साध संगत हुण भगती कर दिया जिस वेले उन्हां उच्चियां जातां वालिआं ने तकिया हुण मन च ख्याल आ गया कि कबीर दा गुरु केड़ा है कबीर नू दिखिया किने दिती है ए माला किवें फड़ के बह गया ए ते नाम नहीं जप सकदा क्योंकि उस वेले उन्हां पंडतां ब्राह्मणा ने ए उपदेश दे दिता कि उच्चियां जातां वाले ही नाम जप सकदे ने छोटी जात वाला नाम ही नहीं जप सकदा साध संगत हुण ध्यान देना पुछ कीती तेरा गुरु कौन है कहन लगा जी स्वामी रामानंद जदों स्वामी रामानंद जी दा